0: हेलो जेमी, राहुल आ गया एंट्री पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी मिला यहाँ पर नहीं। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो उसे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
3: श्रुति,
1: राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।